हर वक्त तेरे मन दी हरेक कामना पूरी कीती है। सेवकां वांग उस दी भगती करदा रहो। अते हे दास नानक आख, मैं उस प्रभु तो सदके जांदा हां, जिसने विघना दे टाकरे हर वेले पूरे तौर ते

सच आख्या सी जदों याद करेगा मैं आवांगा आ वेखना घर दी की हालत हो गई है। मां ने रो रो के अखां गवा दित्तियां तेरे प्यार दी। गुरु नानक पातशाह आए आवाज दित्ती मां माता त्रिपता ने पछाण लिया ए तां मेरे लाल दी आवाज है ए तां मेरे नानक दी आवाज है। भज के आई अखां ना होण करके ठोकर खा गुरु नानक पातशाह ने अगां होके मां नूं मां दे गल ना लगे माता त्रिपता ने आख्या बेटा मैं तेरे स्पर्श तो कर रही हां लेकिन दर्शन नहीं कर सकती क्योंकि रो रो के तेरे याद विच मैं अखां गवा बैठी। हजूर कहन लगे ए केड़ी वड्डी गल है मां एक बारी अखां बंद करके खोल दे। अखां बंद करके खोलिया ताकि वेखिया चौदवी का चंद्रमा चढ़िया हो सामने गुरु नानक पातशाह खड़े थे। आख्या बेटा पिता नू मिले के कोई नहीं ओ तो जिस वेले रोटी खाते यही कहते हैं कि इस हाथ दे नाल मैं गुरु नानक दे मुंह ते चपेड़ मारी ता हाथ विचों बुरकी डिग पैंदी है। मर्यादा पुरशोत्तम गुरु नानक सच्चे पातशाह आए मैं ता कालू पिता दे चरणा नू हाथ लाया चरण स्पर्श कीते पिता कालू ने गल ना ला लिया बेटा मेरे तो पहले ही राय बुलार नू मिल जेड़ा ओ जंगल विच बन हेठा बैठा गुरु नानक कूक रहे। गुरु नानक सच्चे पातशाह आए बन हेठा की वेख्या राय जी कदे इस पासे मुंह करके बैंदे कदे इस पासे मुंह करके बैठे सोचदे खबरे इथो ना आ जाऊ फिर सोचदे खबरे दूजे पासे ना आ जाऊ मेरी पिठ ना हो जाए ते आ सोच रहा ते पिछो आवाज आई राय जी असी आ गए दी आवाज सुनी राय ने परत के वेख्या सामने गुरु नानक खड़ोता है चरना ते डिग पिया आज सारे दी पुकार गुरु नानक ने सुनी ते सारे हुण एक मन होके जप रहे हैं की कह

प्रभु दे विछोड़े दा डंग लग जाए। कबीर जी कहंदे ने लाजमी ओ बंदा मर जाए, पर विछोड़ा महसूस होवे से पखंड ना करदा फिर। मरण दा मतलब है अपने आप नू जिंदा ही मार छड़ना। जिसनू आख्या मोह मरने का चाव, वो कोई शरीर त्यागण वाली गल नहीं, पर हो सबन की रेंड कर, सारिया की रेंड बन जाना, इतना अपने आप नू मार छड़ना। तो कबीर जी आखदे ने अवल ते मनुख जिंदा रह ही नहीं सकता, पर जे सियाणा बनिया होए फिर उसका ते कोई इलाज नहीं, कोई गल नहीं। पर कबीर जी एक गल होर आखदे ने, जे जिंदा रह भी जाएगा

केवन किन्ही निवल भयंगम साधे मोहे दीन हर हर आराधे तेरा भरोसा प्यारे आन न जाना वेसा किन्ही ग्रह तजवन खंड पाया किन्ही मोन अवधूत सदाया कोई कह तो अनन भगवती मोहे दीन हर हर ओट लीती।

मन में ना गुरमत, गुरमत में ना मन, नेचल होए ना उन मन लिवलाइए, अंग अंग भंग रंग रूप।

मेरे हिरदे च कपट है ते तू मेरे कपट नू जानना। मैं भी कुछ जानना, मैं सिर्फ इना जानना कि तेन बख्शना भी आउंदा। जे तू साडे दिल दियां जानना है ते तेन जान के फिर बख्शना भी आउंदा। वेख के साडे बारे जान के फिर खिमा कर देन दी भी गल तेरी है। ते जे साडे वालों गिणिया जावे ते फिर तो बड़ा मुश्किल है। जे मालिक तेनू प्रवान करन वास्ते, तेनू प्रवान होन वास्ते, तेनू प्राप्त करन वास्ते मैं अपने वल वेखा ना, मेरे कोल रूप है ना, मेरे कोल अखां ने ना, अखां विचो नजर है जिहड़ी तेनू वेख ते माण सके, ना मेरे कोल रूप है जिहड़ा तेनू दिखाया जा सके, ना मेरे कोल जबान है जिहदे विचो मिठे मिठे बचना नाल मैं तेनू रिझा सकां। बल्कि मेरी तां सुरत दे, मेरी करनी दे हाथ पैर भी सिद्धे ने। कुलहीन कह लो, गुणहीन कह लो, ते जिहदी कुल भी कोई ना होवे, जिहदा गुण भी कोई ना होवे, उहदी शोभा भी कादी। ऐसी अवस्था च मैं तेनू प्राप्त किवें होवां, तेनू प्रवान किवें होवां, तेरे नेड़े किवें होवां, कोई चारा नहीं। हां जद ए जानना कि तेरा बिरद बख्श लैण वाला है, तेरा सुभा तेरा नेम बख्श लैण दा है, उदों आके भरोसा थोड़ा हो जांदा है।

के मेरी बनाई हुई सृष्टि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष की अग्नि में जल रही है। निरंकार ने गुरु नानक का रूप बनाया, गुरु नानक का रूप तार के संसार ते जगत जिया नू तारन वास्ते आ गया। साथ सगत बोलो श्री किथे प्रगटिया गुरु नानक आख्या गुरु नानक प्रगटिया राय पोएंदी तलवंडी विच आप नारायण कला तार जग में परवरे राय पोए दी तलवंडी विच निरंकार ने मैता कालू दे घर माता तृप्ता दी कुख चो जदो जन्म लिया दौलतां दाई ने वेख्या के जिस कोठड़ी विच आ बालक जन्मे है वो सारी कोठड़ी प्रकाशमान हो गई है और जिवें हजारां नहीं लखां नहीं करोड़ां जय जयकार दियां आवाजां आ रही हैं और एक ऐसी महक उस कोठड़ी विच प्रकाश उस कोठड़ी विच जिस वेले ए बालक ने जन्म लिया आ जन्म लेंदिया ही आ बालक मुस्कराया हैरान रह गई दौलतां दाई मेरे हत्थां विच अनेक बालक पैदा होए लेकिन ए तां कोई अनोखा ही बालक है। दर्शन पा के दौलतां दाई तन हो गई। साथ सिगत बोलो श्री बधाई दीतीस बार आई कोठरी विचों बधाई दीती मेहता जी वधायो तोड़े कर ता कोई अनोखा ही बालक जन्मे जिसे जन्म लेंदिया ही सारी कोठरी प्रकाशमान हो गई जय जयकार दिया आवाजा आ रही हैं चारे पासे सुगंधी फैल गई है। मेरा मन कहिंदा है ए कोई साधारण बालक नहीं है ए ता कोई परमेश्वर दा उस अकाल पुरख वाहेगुरु का कोई रूप ही तुहाडे घर आया है। साथ सगत बोलो श्री गुरु नानक सच्चे पातशाह ने रात्रि दे तीसरे पहर दे आरंभ विच जन्म लिता। मैता कालू ने समा लिख लिया और जदो सवेरा होया अमृत वेले पंडित हरदयाल दे घर गया और कहन लगा रात मेरे घर बालक होया ते मैं चाहना हां उसकी जन्म कुंडली तैयार करो। पंडित हरदयाल उठ के बैठा मेहता जी नु बिठाया कोल कालू जी नु मेहता कालू नु कोल बिठाया पुछया कितने बजे होया बालक आखे तीसरे पहर दे आरंभ विच। जदो पंडित हरदयाल ने अपनी ज्योतिष विद्या दे नाल सारी जन्म कुंडली दा हिसाब बढ़ा के तैयार कीता ते जदो लिखन लगा ते कलम रुक गई। कहन लगा मेहता जी जे मैं लिखदा हां ता मैनू समझ नहीं आउंदी के मैं ठीक लिख रहा क्योंकि और नहीं लिखदा ता मैं ए वेखदा कि मेरी ज्योतिष विद्या कदे गलत नहीं हुई। मेरे हिसाब नाल ए बालक दुनियावी बालक नहीं ए ता परमात्मा दा रूप है। साथ सगत बोलो श्री ए प्रभु दा रूप है। मेहता कालू ने खुश होके पंडित हरदयाल नु इनाम वजो धन दिता और प्रसन्न होके घर आया। हुण चारे पासे माता तृप्ता नु मेहता कालू नु वधाइयां मिल रहियां कि अज बालक ओ बालक पैदा होया जिसका दर्शन करके

महाराज गुरु नानक सच्चे पातशाह संसार नु तारदे होए हरिद्वार जा पहुंचे। हरिद्वार दी जदों पवित्र धरती ते पहुंचे ते की वेख्या उत्थे दे लोग कर्म कांडा विच पए होए। एक पंडित सूरज वल मुंह करके ते गंगा जल पाई जाऊं ताई साहब जी ने भी गंगा विचों एक लोटा लिया ते आख्या पंडित जी आ की कर रहे हो। पंडित कहिंदा जी मैं सूरज देवता नू जल दे रहे। साहब जी कहन लगे अच्छा आ पूर्व वल करके पंडित जल दे रहा है सूरज नू ते गुरु नानक ने पश्चिम वल मुंह कर लिया ते लोटे दे नाल जल पाना शुरू कर दिता। सात सगत बोलो श्री। पंडित कहन लगा सूरज इस पासे है तुसी जल उस पासे पा रहे हो। तुसी जल उस पासे क्यों पा रहे हो तां गुरु नानक सच्चे पातशाह ने आख्या इस पासे मेरे खेत हन करतारपुर विच मैं उन्हां नू पानी पा रहे खेती नू। पंडित कहन लगा कितनी कु दूर है आख्या कोई 400-500 मील होना इत्थों। आख्या तुहाडा एक लोटा पाया पानी ओ खेतां तक पहुंच जावेगा। साहब जी कहन लगे जे तेरा पानी सूरज तक पहुंच सकदा है तां क्या साडा पानी करतारपुर खेती तक नहीं पहुंच सकदा। पंडित जी कर्म कांडा विच कुछ नहीं जे पिया जे परमेश्वर दा नाम नहीं जपोगे और कर्म कांडा विच पोगे तां इना कर्मा कांडा ने तुहाडा उधार नहीं करना। उधार तां प्रभु दे नाम ने करने। सात सिगत बोलो श्री। बाबा नन सिंह जी महाराज कलेरां वाले पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी आप क्या कर दे सन भाई आ दुनिया दे जितने कर्म कांड जप तप हन ए सारियां सिफरां हन सिफरां ये सारे जीरो हैं और बेशक एक कागज उत्ते जितने मर्जी जीरो पा दे उना दी कोई भी मूल नहीं है जब तक उना दे अग्गे एका ना पवे। जे एक पावेगा एका लिखेगा और उस तो बाद जीरो पावेगा ते 10 बन जाए। 2 जीरो पावेगा 100 3 पावेगा 1000। इसे तरह दुनिया दे जितने कर्म कांड हन जप तप हन बिना नाम तो जे ए करेगा ता तेरे मन नू हंकार हो जाएगा और कीते हुए तेरे कर्म सारे नाश हो जाएंगे। जे परमेश्वर दा नाम होया तेरे कोल ता उना कर्म कांडा दा वही मुल पैणा। सात सगत बोलो श्री। जिवें एके तो बिना उना सिफरां दी कोई मुल नहीं इसे तरह एक प्रभु दे नाम तो बिना जो कुछ मर्जी करदा रह कदे थाए नहीं पवेगा तेरा। गुरु अर्जन दे पातशाह पानी विच कहंदे हन प्यारे इन विद मिलन न जाई मैं किए कर्म अनेका मैं अनेक कर्म करके वेख ले हन लेकिन एक प्रभु दे सिमरन तो बिना इस जी दे नाल किसे ने नहीं जाना। सात सगत बोलो श्री। जदों ऐसा सच दा उपदेश पंडित जी नु दिता बहुत संगत उत्थे आके गुरु नानक दे दर्शनां ते जुड़ गई ते उस संगत विच एक छोटी जी 10-12 साल दी एक बच्ची भी सी। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने आख्या पंडित जी इस जीवन दा कोई भरोसा नहीं है पता नहीं कितने श्वास हैं बाकी कितने नहीं आ भरोसा ता एक पल दा भी नहीं इतना भी भरोसा नहीं कि जेड़ा श्वास असी छड़े है पता नहीं ओ वापस आउंदा के नहीं आउंदा। सात सगत बोलो तेरे इस वास्ते नहीं भरोसा इस जीने दा ऐसा सच दा उपदेश जदो उस बच्ची ने सुनिया कि इस जीवन दा कोई भरोसा नहीं है ता अगा होके जिते गुरु नानक सच्चे पातशाह बैठे सन उस बच्ची ने जाके जदो गुरु नानक सच्चे पातशाह दे चरना ते सिर रखिया गुरु नानक दे चरना दी शो पा के उस बच्ची दे कपाट खुल गए ज्ञान हो गया
कि मैं किस वास्ते संसार से आई और मेरा मनोरथ की है। ऐसा सच का उपदेश गुरु नानक ने दिता उत्ते संगतां नूं के भाई एक परमेश्वर दे नाल जुड़ो, एक प्रभु दा सिमरन करो, उस सिमरन ने ही तुहानूं इस संसार सागर तो पार करना है। ए उपदेश जदों सुनिया ए बच्ची भी ए उपदेश पल्ले बन के बह गई और गुरु नानक सच्चे पातशाह संसार नूं तारदे होए अगे निकल पए।

आगे को किच तुल्हा बांधो। कोई भरोसा नहीं इस शरीर दा। नाम दा तुल्हा तैयार कर जिदे तो तू चढ़ के पवजल पार कर जावे। सब कहंदे ने समा किसे दी इंतजार नहीं करदा।

सतगुरु कहंदे ने देह सदा नहीं रहनी। जिंदगी विच कोई ऐसा कम कर जा के लोग तैनू याद करन, भाई वाह फलाना ता एदां दा सी, बड़ा चंगा सी।

मन गुरु चरणा दे नाल जोड़ के वाहेगुरु शब्द दा उचारण करदा है उसनू एडा वड्डा फल प्राप्त है कि जैसे अठ सठ तीर्थ परस किए अठ अठ तीर्थां दे इशनान दा फल एथे ही बस नहीं जैसे अठ सठ तीर्थ परस किए जुग चार चढ़े हो कैलाश रहे हो कोई चार युग कैलाश पर्वत ते बह के तप कर लवे और इस दा महात्म एथे ही बस नहीं अगलियां तुकां विच सरवण

बेर कुरुक्षेत्र में अश्वमेध जग अभंग थयो, हुन अमृत नाम विशेष कीती जिन एक बार श्री वाहेगुरु कहो। आख्या वाहेगुरु जपन दा इड्डा वड्डा महात्म क्यों है? ता भाई साहब अगली पौड़ी विच बयान करदे हन, भाई वाहेगुरु शब्द

पलकते गया पाताल नानक नानक बिना जहान दी दिशा कोई ना मशरक मगरिब जनूब शुमाल नानक कदे काशी ते कदे प्रवेश मक्के बनया सारे आंदा सांझी वाल।

इते अवगण हमारे दया करो किछ मेर पावो डुब दे पत्थर तारे ज्योड़ा अगन बराबर तपै पीतर वगे काते प्रणवत नानक हुकम।

ना ही कोई ऐसा ढंग है ते ना ही परमात्मा मेरे मिठे बोलने जेड़े बोल बोल की मैं तेनू अपने आप ते मोहित कर लवा। ऐसा गुण मेरे अंदर कोई भी नहीं है, मैं ते अवगुणा दा परिया तकना के परमात्मा रूप।

कुलवंत है, कुलवंत है, पतवंता सज्जन है, जिद हिरदे अंदर प्रभु दे नाम दा निवास है। हे परमात्मा, मेरे अंदर ते अवगुण भरे ने गुण ऐसा कोई भी नहीं। हे परमात्मा, आप दी मंग है के बोल मिठे बोल, मैं जद बोलना कौड़ा बोलना, ते मेरा परमात्मा कैसा है, मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा। ओ मिठा बोल बोलदा है ते हुक्म करदा है भाई मिठा बोल बोल, जो बोल बोलने करके किसे दा भला होवे, किसे दा मन ना टुटे। हे परमात्मा, जेड़े गुण तेनू चाहिदे ने मेरे विच नहीं, इसलिए मैं चंगा नहीं।

फिर तुसी दसो कि अपने अवगुण किवें बख्शाए जा सकते ने। ओ सतगुरु साडे अवगुण बख्श भी देवेगा। भाई सब कहते ने मैं विश्वास नाल कहना वा कि हे मनुख तू अवगुण करनी छड़ दे, ओ परमात्मा तेरे अवगुण बख्श देवेगा। ऐसा नहीं कि अवगुण भी करी जाए ते नाल दी नाल बख्शाई भी जाए, नहीं एक दिन तौबा कर ले, ओ ते बख्शन जोग है ही, उन्हें ते बख्शते रहना है। पर ऐसी गल नहीं कि तू अवगुण करदा ही चला जावे, नहीं तू तौबा कर, सतगुरु दा सिमरन कर।

आओ इस दे बराबर कोई भी रतन की मुकाबला रख दे। कीर्तन वाहिगुरु परम पिता परमेश्वर दी सिफत सलाह ओदी कीर्ति भगवान दी उस्तत विच कहंदे ने नारद भगवान भी हर वेले वीणा हथ विच लेके उस्तत करदे होए कीर्तन ही करदे रहंदे सन। तो गुरु घर दे विच कीर्तन दी बड़ी महानता है। कीर्तन जो गुरसिखां दा आधार है, गुरसिखां दी जान है। गुरु नानक नाम लेवा गुरसिख, गुरु अते गुरु के कीर्तन तो बिना रह नहीं सकदा। ये जीवन है गुरु के सिख दा। कीर्तन सिमरन भी एक भगती है, सेवा भी एक भगती है। नौ भगतियां मनिया जांदियां ने, उना विच्चों एक भगती है कीर्तन भगती। तो गुरु रामदास पातशाह इस पावन शब्द विच कीर्तन दी महानता दर्शाउंदे होए कह रहे ने, मैनू मेरे सतगुरु ने वाहिगुरु दा नाम हरि नाम दस्या है, ते मैं उस कीर्ति दे विच ही हर वेले लीन रहिंदा हां। और ए भागां नाल

अंतरजोत राम परगासा गुरमुख बिरले जाने भगत कबीर साहब दा उचारिया होया ए शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे विच दर्ज है।

उसनु कोई सुनावे कोई कहे। अगर कोई झूठी कहानी सुनावे लोग उसनु भी सुनदे हन, पर ए ते परमेश्वर दे नाम दी कहानी सच्ची कहानी। और भगत कबीर साहब कह रहे ने, अंतर जोत राम प्रगासा। जिस वेले इंसान दे अंदर नाम दा प्रकाश हो जाए ता फिर ओ इस कहानी नु जान लेंदा है कि परमात्मा दे मेल दी अवस्था की है। पर एक गल है, गुरमुख विरले जानी, कोई विरला गुरमुख इस कहानी नु जानदा।

तीन बंधा विच इस तरह वंडदे हन। हे भाई, जे कोई मनुख अपने आप नूं गुरु दे हवाले करदा है, ओह प्रकाश रूप परमात्मा दे मेल दी अवस्था नूं समझ लैंदा है। उस दे अंदर जोत जग पैंदी है, उस दे अंदर राम दा प्रकाश हो जांदा है। पर इस अवस्था नाल जान पछाण करन वाला हुंदा कोई विरला ही है। गुरु दे सन्मुख होए अजिहे मनुख नूं इह समझ आ जांदी है कि संसार एक रुख समान है।

परमात्मा ने बनाई है। जिवें एक पौरा फुल दे रस विच मस्त होके फुल दियां खिड़ियां पत्तियां विच अपने आप नूं जा बनाउंदा है, जिवें कोई पंछी अपने खंभां नाल हवा नूं उलारा दे के आकाश विच उड़दा है, तिवें ओह गुरमुख नाम रस विच मस्त होके पूर्ण खड़ाओ नूं अपने हिरदे विच टिकांदा है ते सोच मंडल विच हुलारा दे के प्रभु चरणा विच उड़ारी लांदा है। उस गुरमुख दी उस अडोल अफुर अवस्था विच उस दे अंदर कोमलता रूप मानो एक कोमल बूटा उगदा है जो उस दे शरीर दी तृष्णा नूं सुका दिंदा है। कबीर साहब कहिंदे ने, मैं उस इंसान दा उस गुरमुख दा दास हां जिसने अपने अंदर उग्या होया एक कोमल बूटा देखिया। सत्संगत, ए ब्रह्म ज्ञान दी अवस्था दा शब्द है जेड़ा इस कहानी नूं जान लैंदा है कि परमेश्वर दे नाल गुरु मेल करांदा है और परमेश्वर दे नाल जद मेल हो जाए ते फिर ओ इंसान की समझदा है। ए जिहड़ा संसार है एक दरख्त है और ए जीव जंत इस दरख्त दियां टाहणियां हैं, ए जीव जंत फुल हन पत्ते हन फल हन, तरवर एक अनंत डार साखा पोहप पत्र रस परिया, ए अमृत की बाड़ी है रे तिन हर पूरे करिया। ऐ पाए ए संसार अमृत दी बगीची है, अमृत दा बाग है और इस बाग नू परमेश्वर बनान वाला है। इस गल नू ओ समझदा है जिदे अंदर राम दा परमेश्वर दे नाम दा प्रकाश हो जाए ते जिदे अंदर राम नाम दा प्रकाश हो जाए ओही गुरमुख बनदा है ते ओही फिरे कहंदा है नांको बैरी

परमेश्वर का रूप नहीं समझता। इसे वास्ते ये लड़ाई झगड़े दंगे फसाद होंदे हैं। इसे वास्ते इंसान इंसान दे नाल नफरत करता है। कबीर साहब कह रहे हैं, अगर पूरा गुरु मिल जाए वो इन्हां गल्लां दी सोझी करांदा है कि ऐ इंसान इस संसार परमेश्वर दा बनाया होया है, ओदे बनाए हो जीवा नाल प्यार कर, कोई भी बेगाना नहीं। पर इन्हां गल्लां दा उदों

मैं सिमरन करके ये गल जान ली है कि सिमरन करन दे नाल जिथे दुखां दा नास हुंदा है उथे जग जीवन सिंह जीव समाना जीवन देने वाला जेड़ा परमात्मा है ओ दे नाल जीव दा मिलाप हो जांदा है और ओ इंसान इस कहानी नू जान लैंदा है सिमरन सदका कि सारे विच परमेश्वर दा नूर है ओदी जोत है।

तृष्णा रूपी जल सूख गया, मन दी हर तृष्णा खत्म हो गई, क्योंकि नाम जिहड़ा है ये सारिया भुखा तृष्णावां खत्म कर देंदा। हर इंसान एक चीज मिले तो दूसरे की इच्छा मन विच पैदा होती है। हर इंसान भज रहा, जिद को एक चीज है उसनु दूसरी चीज की लोड़ है। एक देश का जी राजा है, राजा बन के भी उन्हें तसली नहीं, कुछ होर चाहता। कोई वजीर है, वजीरी लेके भी वो रजिया नहीं, कुछ होर चाहता। हर इंसान भज रहा है, पर सतगुरु जी कह रहे हैं सुख नाही बहुते धन खाटे। सुख बहुती माया विच भी नहीं, सुख नाही बहुते धन खाटे, सुख नाही पेखे निरत नाटे। बहुते नाटक चेटक देखने विच भी सुख नहीं, सुख नाही बहुत देश कमाए। कई इंसान देखे है देशां परदेशां विच भजे फिरदे ने, पर फिर भी सुखी नहीं। सुख उन्हां दे भागां विच

जितना समा परमेश्वर दे नाम दा कीर्तन सुनोगे उतना समा तुहानू अपने दुख कलेश भुल जाणगे ते जदों उस रंग विच उठोगे दुख कलेश फिर घेर लैणगे। इसे वास्ते ते गुरु महाराज भगत गुरमुख उपदेश करदे हन कि हर वेले परमेश्वर वल ध्यान रखो। जिवें कीर्तन सुनदे आ दुख भुल जांदे ने, हर वेले उहदा नाम चेते रखोगे ते दुख कलेश कदी भी तुहानू तंग नहीं करनगे। पर इन्हां गल्लां दी सोझी हुंदी है जदों गुरु अते गुरु दी बाणी दा सानू ज्ञान होवे। गुरु की है? गुरु है बाणी, क्योंकि गुरु बाणी द्वारा उपदेश दिंदा है। इसे वास्ते सतगुरु जी अपने शब्द विच इस तरह फरमांदे हैं,

क्योंकि बाणी गुरु देंदा है। इसे करके सतगुरा ने इंसान नु कहा किसे देहतारी दे पिछे ना लगो, बाणी नाल जुड़ो, क्योंकि बाणी परमेश्वर दी है। जो परमेश्वर कहंदे गुरु ओहो ही उपदेश करदे, ते गुरु कहंदे तुसी मेनू परमेश्वर ना कहो, मैं भी परमेश्वर दा भेजिया आया, मैं ते परमेश्वर दा सुनेहा तुहानू देना है, ते तुसी भी परमेश्वर नाल जुड़ो। ए बाणी मेरी नहीं, ए परमेश्वर दी बाणी। जैसी में आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान विलालो। जेड़ा इंसान, जेड़ा पीर पैगंबर अपने नाल जोड़े कि सब कुछ मैं हां, मैं परमेश्वर हां, समझो ओ परमेश्वर तू भुलिया होया। ते जेड़ा परमेश्वर नाल जोड़े असल विच, समझो ए परमेश्वर नाल जुड़िया होया है, क्योंकि ए परमेश्वर नाल जोड़ रहे हैं।

कितना चानना कितनी रोशनी होंदी है एक सूरज दे चढ़न ते। अगर हजार सूरज भी चढ़ पवे सौ चंद्रमा भी रोशनी देवे तामी मन दे विच हनेरा रहिंदा है अगर मन विच ज्ञान नहीं। कई बारी आपां देखदे हां एयर कंडीशन कमरे हुंदे ने पर अंदर बैठा इंसान सड़ रहा हुंदा है गुस्से दे नाल उहदे मन नूं चैन नहीं हुंदा। रोशनी विच इंसान बैठा होवे अंधेरे विच हुंदा है अंधेरा केड़ा अज्ञान दा। अज्ञान की है? अज्ञान ए है कि दूसरे दा हक मैं खावा अपने सुख वास्ते दूसरे दा हक खाना दूसरे नूं दुख देना ए है अज्ञान। ते ज्ञान की है? ज्ञान ए है कि भाई सारे विच परमेश्वर है सारे विच खुदा है वाहिगुरु है जे सारे विच ओ है फिर ते मैं सारे नाल प्यार करांगा। इन्हां गल्लां दी सोझी

परमेश्वर दी कहानी दा पता नहीं लगदा। गुरु परमेश्वर दी कहानी दसदा है कि सारे विच परमेश्वर है, ते जेड़े गुरु दा उपदेश सुनदे ने

जितनी माया तेनू दिती है उतनी तू लै, जितनी माया मेनू मिली है वो मेरे कोल रहन। पर ब्रह्मा छोटा भरा कहन लगा, सेठ ने तेनू वड्डा समझ के ज्यादा माया दिती, मेनू छोटा समझ के थोड़ी माया दिती। पावे उन्नी माया तेनू बहुती मेनू थोड़ी दिती, पर गए थे आप इकट्ठे से, इस करके असी बराबर हिस्सा करना। और पैसे तू झगड़ा हो गए, और झगड़ा हुंदा भी अक्सर देखते हैं। देश दे वजीर या सरकारी लोग भी चौधरी और माया दे पिछे अपना जमीर देश कौम भी बेच देंदे हैं। इस वास्ते नहीं कि उन्हां नूं कोई सेवा दा चाहे, बहुत घट हुंदे हन सेवा वाले, बहुते ते अपने स्वार्थ वास्ते ए नारा लगांदे ने असां सेवा करनी है। नारियां दे नाल सेवा नहीं हुंदी, सेवा ते मन हुंदी। हुण मन विच लालच, दोनों भरा हैगे ने भगत, पर माया पिछे लड़ पे। ए लड़ाई इथों तक जा पहुंची, वड्डे भरा ने श्राप दे दिता, ब्रह्मा तू लालच कीता, अगला जन्म तेरा तंदुए दा होगा। पानी विच रह के, पानी दे विच रहन वाले जीवां नूं खा के अपनी लालच वाली ए बिरती पूरी करेगा। हुण ब्रह्मा ने भी तप कीता, उसनु भी गुस्सा आया, उसने भी श्राप दे दिता। कहन लगा, ठीक है भरा, जे मैं मर जाना तो जिंदा तू भी नहीं रहेगा, तेरी भी मौत होवेगी, तू जंगल दा मस्त हाथी बनेगा। और जंगल विच भटकदा भटकदा एक दिन उसे जगह आवेगा जिथे मैं होवांगा। मैं पानी दे विच होवांगा, तू पानी पीण आवेगा, ते मैं फिर अपनी तारां दे नाल तेरियां लत्तां पकड़ के उथे पानी दे विच मैं तेनू गोते दे दे के मारांगा, और इस गल दा बदला लवांगा कि तू मैनू श्राप दिता है। ने भगत पर माया विच आ गई, और माया ने दोनों नू भगती दे थां तों थले सुट दिता। समा आया, दोनों दी मौत हुई, वड्डा मस्त हाथी बन गया और छोटा तंदुआ बन गया। इस गल नूं गुरबाणी विच भी साहिब जी बयान करदे हन, राम गुर सरन प्रभु रखवारे, ज्यों कुंचर तंदुए पकर चलायो, घर ऊपर कढ निस्तारे। गज पत पार उतारे, अनेकां शब्दां विच इस साखी का जिक्र गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच और हिंदू पुराणा दे विच आंदा। एक भरा हाथी बनिया, एक तंदुआ बनिया, और वो समा आया होता जिहड़ा हाथी बनिया सी, बहुत सारे हाथी इहदे नाल ने, इह जंगल विच फिरदा फिरांदा गंडका नदी दे डुंबदे आ पहुंचिया। गर्मी सी, नदी दे विच जद वड़िया और किनारे ते धुप करके पानी गर्म सी, ए ज्यों ज्यों अगे होया इस नूं ठंडा पानी मिले, और हौली हौली ए हाथी पानी दे विच काफी अगे तक चला गया, और अगे एदा छोटा भरा तंदुए दी जून विच बैठा सी। उसने अपनी तारां दे नाल हाथी दे अगले पैर पकड़ ले और हाथी नूं अपने वल खिंचना शुरू कीता। पहलां ते हाथी ने परवाह ना कीती, पानी पी के वापस मुड़न लगा, पिछे नहीं मुड़िया जांदा, ते हाथी समझ गया मैनू कोई पकड़न वाला तगड़ा जीव है। इसने जोर लाया, कुछ पिछा आया, पर फिर तंदुए का जोर चलिया, हाथी

दरबार विच बैठे। साई मियां मीर आया, बेनती कीती गरीब निवाज, आपने जो ए बाणी रची है, तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदार्थ नानक मांगे। आपने बाणी रची है, तन मन काट काट सब अर्पी, विच अग्नि आप जलाई, ऐसा कौन है जेड़ा अपने शरीर नू अग उपर रख के ते फिर भी परमात्मा दे पाने विच रहे, फिर भी उसके हुक्म विच रहे। ऐसा कौन है, कृपा करो। सिर्फ ए बाणी मुझ बानी ही उचारी है कि इसके ऊपर कोई अमल करन वाला भी है। ता गुरु अर्जन देव पातशाह कहन लगे, साई मियां मीर समा आवेगा, ये जो अखर असी लिखे हैं, जो अखर उचारे हैं, इन्हां ते अमल भी करके दसांगे। ते फिर समा आ बने जदों बादशाह जहांगीर दा दीवान चंदू जिसकी लड़की दा रिश्ता लैके लागी हरमंदर साहब आए गुरु हरगोबिंद जी वास्ते, ते लागियां ने जदों गुरु हरगोबिंद जी नूं वेख्या तां आख्या, इस तों सुंदर संसार ते होर कौन हो सकदा है, ते चंदू दीवान दी लड़की वास्ते ए वर सब तों अच्छा है। उन्हां बेनती कीती गुरु अर्जन देव महाराज नूं कि ए लड़का चंदू दीवान दी लड़की वास्ते असी आप पासों मंगदे हां। साहब जी ने क्या अच्छा, जिस वेले लागी सगन दे के गए ते चंदू दीवान नूं जाके आखिया कि असी आप दी लड़की दा रिश्ता गुरु अर्जन देव पातशाह दे सपुत्र गुरु हरगोबिंद जी नाल कर दिता है, तां चंदू दीवान जिसनूं अपने

कोई भरोसा नहीं इस शरीर दा। नाम दा तुलहा तैयार कर जिदे तो तू चढ़ के पवजल पार कर जावे। सब कहंदे ने समा किसे दी इंतजार नहीं करदा।

सतगुरु कहंदे ने देह सदा नहीं रहनी। जिंदगी विच कोई ऐसा कम कर जा के लोग तैनू याद करन, भाई वाह फलाना ता एदां दा सी, बड़ा चंगा सी।

बुद्ध सो दीपक जू जियारे, ज्ञाने की बढ़नी मनो हाथ ले। शत्रु कहंदे ने ज्ञान दा झाड़ू मन दे हाथ विच पकड़ लै, ते अपने अंदरों ईरखा द्वैत चुगली निंदा बखीली ए सारी हूंज के बाहर कढ़ दे, ताके तेरे हिरदे च टिक जावे सतनाम श्री वाहेगुरु।

अमृत की है, अमृत है परमेश्वर दा नाम, अमृत। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने तैयार करके सिखा नु पिया ते खालसा पंथ साजिया। पर इस अमृत की कहानी बड़ी लम्मी, चार युग होए ने, सत युग, त्रेता, द्वापर ते कलयुग। हर युग विच अमृत पीता गया, पर अमृत पीण दा ढंग वखरा, अमृत लभण दा ढंग वखरा। एक गल होर, कुछ लोकां अमृत पीता पहलियां युगां विच, अमर होण वास्ते कि सानू मौत ना आवे, कोई दुख लागे ना आवे, अपने वास्ते अमृत पीता, अपने भले वास्ते। पर जेड़ा अमृत धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने सिखा नु पिया, ओ अमृत आपा वारन वास्ते, जुलम खत्म करन वास्ते, मजलूमा दी रखिया करन वास्ते। तो आओ विचार करिए, पहला सतयुग बारे के सतयुग विच ए अमृत किस तरह मिलिया ते किस तरह पीता गया। पहला हिंदू मत अनुसार कथा, उस तो बाद गुरमत अनुसार।

एक किस्सा तरती तेन से पानी मनिया गया समुंदर बड़ा वट है। एक वरी देवतिया ने विचार की थी देखिए ता सही एडा वड़ा समुंदर है इस विच की चीज है केड़ी केड़ी वस्तु है पर एडे वड़े समुंदर विचों चीजा लभनिया ते ए देखना कि समुंदर विच की है बड़ा औखा सी। सलाह की थी सारे क्यों ना समुंदर नू रिड़किया जाए जिस तरह दही है दही दे विच लस्सी भी मक्खन भी पर लस्सी ते मक्खन आपां नू उदों मिलेगा जदों आपां दही नू रिड़कांगे ते दही नू रिड़कण वास्ते मदानी दी लोड़ है रस्से दी लोड़ है समुंदर नू रिड़कण वास्ते भी मदानी चाहिए रस्सा चाहिए पर समुंदर अथाह है एडे वड़े समुंदर वास्ते लकड़ दी मदानी बनानी बड़ी औखी। ता सारिया देवतियां सलाह करके मंदरा चल पर्वत नू मदानी बनाया शेष नाग नू रस्सा बनाया। शेष नाग नू उस पर्वत दे द्वाले लपेटिया गया एक पासिओं उस सप नू देवतिया ने फड़िया एक पासिओं दैंता ने देवतिया विच विष्णु भगवान इंद्र आदिक देवते ने दूसरे पासे दैंत बड़ी शक्ति ते ताकत वाले। एक वरी सप नू शेष नाग नू देवत्या ने अपने वाल खिचिया एक वरी दैंता ने सप नू शेष नाग नू अपने वाल खिचिया ते ओ जड़ा पर्वत सी ओ समुंदर दे विच इस तरह घुमण लग पिया जिस तरह चाटी दे विच मदानी घुमदी। देवते उस शेष नाग नू अपने वाल खिचदे ने दैंत अपने वाल खिचदे ने ते पर्वत जिहड़ा है ओ समुंदर दे विच घुम रहा है। बड़ियां भयानक लहरां उठियां जदों लहरां उठियां ते सारिया तू पहला जहर निकलिया जहर बड़ा खतरनाक सी धरती ते सुट देने ता नुकसान बड़ा हुंदे। ओ जहर शिवजी भगवान नू पीण वास्ते बेनती कीती गई ओ सारा जहर शिवजी भगवान ने पीता उस जहर दा असर शिवजी भगवान ते भी होया उन्हां दे गले दा रंग नीला पै गया। इस करके शिवजी भगवान नू लोक नीलकंठ भगवान करके भी याद करते। जहर तो बाद अनेकां वस्तुआं निकलियां जिन्हां विच काम तीन गऊ पारजात दरखत लक्ष्मी अनेकां वस्तुआं निकलियां लक्ष्मी नू विष्णु भगवान जी ने अपना लिया पारजात दरखत नू इंद्र देवता अपने स्वर्गां विच लै गया जिते अनेकां चीजां निकलियां उथे अमृत दा कड़ा भी निकलिया पर ए अमृत दा कड़ा दैंतां दे हाथ लग गया।

एक गुफा च बह जा। करोड़ा करोड़ा साल हवा खा के हवा पी के तेरा नाम जपा, सुपने विच भी मैं सोवा ना, इन्ना तेरा नाम जपा पर अकाल।

कीर्तन करने वाला। तन गुरु नानक साहब कहंदे ने हौं ढाडी विकार, मैं उस परमेश्वर दा ढाडी हां उदा कीर्तन करने वाला, पर मैं वेला सी। कारे कहंदे ने कम

वार हुक्म होया ऐ नानक दिन ते रात तू मेरा कीर्तन करना है ते दुनिया नू मेरे नाल जोड़ना है।

सुत कंदे ने पुत्र धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अकाल पुरख नु कहंदे ने ऐ अकाल पुरख तुसा कहा सी मैं अपना सुत तोहे निवाजा पंथ प्राचुर करबे को साजा ऐ दुष्ट दमन। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का पहले जन्म का नाम दुष्ट दमन सी। ऐ दुष्ट दमन मैं तैनू अपना पुत्र बना के इस दुनिया ते भेज रहे हैं एक नवा पंथ चलाने वास्ते। ऐ अकाल पुरख हुण मैनू दस मैं कहो जी शकल कहो जी सूरत इंसान नू दया कहो जिया मैं

अकाल पुरख के चरणों में बेनती की। गुरु साहबां दी अखां बंद ने, अखां दे सामने एक सूरत आई, लत्तां पतलियां पर भार सहण वालियां, चौड़ी छाती, मत्था चमकदा, अखां विच नाम दी लाली, बोल फरकदे ने, सोहना दाड़ा, सिर ते दस्तार, हाथ कड़ा, गात्रे कृपान, तेड़ कछहरा, सोहनी सूरत देखी तो गुरु साहब जी पुछदे ने, ऐ सूरत तू कौन है? उस सूरत बोली, मैं खालसा। गुरु साहब जी पुछदे ने, तू कित्थों आई है? ओ सूरत बोली, मैं तुहाडे हिरदे विचों आई हां, मैनू हुण तुसी बाहर प्रगट करो, जो चाहिदा सी ओ मिल गया। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज वापस आनंदपुर साहब आ गए, पर सोचन लगे, ए सूरत बड़ी सोहनी पर किन्नू दया मसंदा नू, पंडता नू, साधुआ सन्यासिया नू, किन्नू दया ए सूरत, क्योंकि जे आपां दुध लैण जाना होवे ते भांडे नू चंगी तरह साफ करके लजाने हैं, जे दुध वास्ते भांडा साफ चाहिदा है ते अमृत वास्ते भी तां मन दा भांडा।

आनंदपुर साहब, धन गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह दा दरबार सजे है। एक पासे माइया बैठिया ने, एक पासे पुरुष बैठे ने। सिंघासन ते धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज विराजमान ने। गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश होए है, कीर्तन हो रहे। अचानक धन गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह ने अखां बंद कीतियां सन, अखां खोलियां, एक पहरेदार सिख नूं कोल बुलाया ते कहन लगे, सिखा कुछ दूर दरखत है, उस दरखत दे थले एक सिख बैठा रो रहे है, जाओ उसनू प्यार नाल साडे कोल लै आ। पहरेदार चला गया। दूर दरखत थले सचमुच एक सिख बैठा रो रहे है, अखां बंद नहीं, हाथ जुड़े हुए नहीं, पर बंद अखां विचों अथरू पै गिरदे ने। ते नाले कह रहे है, ऐ सच्चे पातशाह, मैं की गुनाह कीता है, की पाप कीता है, काबुल तो आया, तेरे दरबार पहुंच गया, पर तेरे दर्शन करन दा मैनु हुकम नहीं। पहरेदार सिख पहला ते सुनदा रहा, फिर मोढ़ा फड़ के हिलाया ते नाले कहा, सिखा तू कोई पाप नहीं कीता, तेनु ते आप कलगियां वाले ने याद कीता। उससे कुठिया अखां पूंजदा होया पहरेदार दे नाल तुर पिया। जदों दरबार विच दाखल होण लगा, इत्थे भी इक पहरेदार खलोता सी। उसने कहा, ए काबल वाला सिख दरबार विच नहीं जा सकदा। नाल आया पहरेदार कहन लगा, ए दरबार क्यों नहीं जा सकदा? तां खलोता पहरेदार कहन लगा, जेड़ा वड्डा मसंद है चेतो, ओदा हुक्म है इस काबल वाले सिख नूं दरबार विच नहीं जान देना। ते सुन के नाल आया पहरेदार कहन लगा, जेड़ा चेतो मसंद दा मालिक है कलगियां वाला, मैनूं ओदा हुक्म होया। ते सुन के पहला पहरेदार परां हट गया। सिख दे हाथ जुड़े ने। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे सामने पहुंचे, दर्शन कीते, अखां विचों अथरू वगन लग पए। तीन दिन हो गए सन रोंदे हां, अरदासां करदे हां, गुरु दे दर्शन कीते, अपना सिर चरणा ते रख दिता ते कलगीधर पातशाह सिर ते प्यार नाल हाथ फेरदे ने ते नाले बड़े प्यार दे नाल कहन लगे, सिखा काबुल तू आए, तीन दिन हो गए ने तेनु रोंदे हां, सानू पता है, सिखा साडे नाल बड़ा प्यार करना है, पर साडे वास्ते बेटा की लैके आए। साध संगत, गुरु किसी चीज का भुखा नहीं, गुरु ने बेटा क्यों मंगी, ए ते गुरु का कौतुक है। कहन लगे, सिखा साडे वास्ते बेटा की लियांदी। सिख हाथ जोड़ के कहन लगा, पातशाह मैं की देन जूगा, सब कुछ आपदा है, मैं सुनियारा वा, हाथियां दे दंद दा एक कंगन जिदे विच हीरे जड़े हुए सन, मैं आपदे वड्डे मसंद चेतो नूं उदों दिता सी जदों काबल गया सी, दूसरा कंगन जिदे विच हीरे जड़े ने मैं लैके आया सां, ओ कंगन मैं चेतो मसंद नूं दे दिता,
ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਤੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ, ਤੂੰ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਖਾ ਇਹ ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਕੰਗਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੇਤੋ ਮਸੰਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਨ ਤੇ ਚੇਤੋ ਮਸੰਦ ਸੰਗਤ ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਇਹ ਕੰਗਾਲ ਕੰਗਣ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।

पंडिता की प्रीख्या ले दो लंगर लाए, एक विच मास बनाया, एक लंगर सादा बनाया। ते साहबा ने कहा जेड़ा मास वाला लंगर छकेगा ओनू बहुत ही माया मिलेगी, जेड़ा सादा लंगर छकेगा ओनू घट माया मिलेगी। मास खाण दे नाल सोने दियां मोहरां ज्यादा मिलनियां ने, ए सोच के बहुते मास वाले पासे बैठ गए, सादे पासे घट बैठे। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जिन्हां ने सादा लंगर खाधा उन्हां पंडितां नूं चोखी माया दित्ती, ते जिन्हां ने मास वाला लंगर खाधा जिन्नी कही सी उन्नी उन्नी माया उन्हां नूं दित्ती। पर इन्हां वल्लों भी मन उदास हो गया कि जिहड़ा आदमी माया बदले अपने धर्म ते पक्का नहीं रह सकदा, ओ जुल्म दा

जदों दोबारा गया मैनू एक सिर दी लोड़ है। हर पासे सहम छा गया कि ए की हो गया। गुरु साहब जी अपने सिखां दे सिर मंगण लग पए। तीसरी बारी सिर मंगया।

सिख परिवार विच जन्म लैके उहदा जीवन किसे लेखे नहीं, अमृत जिहड़ा छक लैंदा उहदी कोई जात नहीं। अगर एक चमार भी अमृत छक लवे रहत विच रवे तो गुरु साहिब जी कहिंदे ने उह फिर चमार नहीं।

गुरु की संगत अज दा शुभ दिन कॉन्फ्रेंस दे पहले दिन दी आरंभता और बख्शिश सतगुरु जी दी। इस वक्त समा जरा अमृत वेले तो लंघ के आप जी नूं जरा थोड़ी जी गर्मी महसूस हो रही होवेगी। जिथे आप जी ने सतगुरु जी दे कई चमत्कार देखे हैं उथे सब तो वड्डा चमत्कार शब्द है, एदे विच कला है। वाजे पंज शब्द तद घर सभा गए, घर सभा गए शब्द वाजे कला जद गिरधारिया। उस कला नूं होर प्रगट करन वास्ते सतगुरु जी ने शब्द नूं रागां विच उचारण कीता है। मेरा दिल करदा है इस वक्त सारे दुनिया दे विद्वान और कलाकार सूझ वाले बैठे हो, गुरु दी कला देखिए राग सारंग विच और आप जी चंगी तरह समझ के इस नूं सुनोगे, आप जी दे तन मन विच ठंडक पैदा हो जाएगी और गुरु दी बख्शिश और समय दा इह निचोड़ होवेगा। शब्द सारे माई भाई बड़े प्यार नाल टिक के सुनांगे तां इहदा ज्यादा लाभ होगा।

देह रा मसीत सोई, पूजा ओ निवाज होई। देहरा और मसीह पूजा अते निवाज इन्हां नूं एक ही समझो, क्योंकि जेड़े इन्हां विच फर्क समझदे ने उन्हां दे मनां विच ही नफरत रहिंदी सदियां तों।

अपने मन विच एक गल सोचो, एक नैन एक कान, सारियां कोल इको वर्गियां अखां, इको वर्गा नक है, इको वर्गा शरीर है, सारियां कोल अखां ने, सारियां कोल कान, सारियां कोल शरीर, सारियां कोल बोली, खाक कहंदे ने मिट्टी, आतिश कहंदे ने अग, आप कहंदे ने पानी। परमेश्वर ने पंज तत् मिला के पंजा तत्तां दा ए शरीर बनाया। साहब जी कहंदे ने चाहे कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, संसार विच जितने भी इंसान हन, सारे पंज तत्तां तो बने।

दसवें गुरु कैसा सुंदर उपदेश कर रहे हैं। अल्लाह अपेक्ष होई, कुरान ओ कुरान ओही।

गंगा, बनारस हिंदुओं वास्ते पूजनीक ने, मक्का काबा मुसलमाना वास्ते। मक्का काबा मुसलमान पूजते ने, गंगा और बनारस हिंदू पूजते ने। अगे भाई साहब की कहते हैं।

राम रहीम कहाइंदे एक नाम। हिंदू राम कहंदा है, मुसलमान रहीम कहंदा है। राम रहीम कहाइंदे एक नाम, परमेश्वर एक है उदे नाम कई। हिंदू राम कह रहे हैं, मुसलमान रहीम कह रहे हैं, पर वो एक है। दोए राह भुलाने, पर देखो

और कतेबा नू भुला दिता है। वेद की पूजा हिंदू करता है, कतेब नू मुसलमान पूजता है। भाई साहब जी कह रहे ने वेदा और कतेबा का उपदेश भुला दिता है और दुनिया जिहड़ी है देखो लालच विच फस के शैताना दे राह ते जो चल

सच किनारे रह गया, सच एक पासे रह गया है। ब्राह्मण और मौलाने आपस च पे लड़दे मरदे ने। भाई साहब जी कह रहे ने, अगर इंसान सच नू ना छड़े, सच पल्ले रखे।

धर्म विच रोजे ईद निवाज और भाई साहब जी कह रहे ने मुसलमाना विच रोजे ईद निवाज ए जरूरी कर दिते और संसार दे विच जेड़े मुसलमान हैं ओ इन्हां दे पाबंद हैं।

इन्हां ने अपना की काम बना लिया, राज भाग मिल गया, लोगों नूं आपस विच लड़ाना और जद भी पता लगना किधरे सोहनी औरत है उस नूं हथियाण वास्ते हजारां बंदियां नूं लड़ाई दे मैदान विच मरवा देण। राजियां दा, वजीरां दा, नवाबां दा ये काम रह गया औरतां वास्ते लड़ाई झगड़े, हजारां लोकां दा खून वहा।

मोम वर्गा होना चाहिए, जिस तरह मोम पिघलती है और रोशनी देती है, इसे तरह ए मुसलमान तू भी किसी ने दुखी देखे ते तेरा मन भी मोम दी तरह पिघल जावे। आप भावे दुखी हो पर दूसरे नु

और दूसरे पास से ब्राह्मण ने उपदेश किया, कहे कबीर जो ब्रह्म विचार सो ब्राह्मण कैयत है हमारे, जिड़ा ब्रह्म दी विचार करे, जिड़ा ब्रह्म नाल जुड़िया रवे असी ते ओनू ब्राह्मण कहने हैं, क्योंकि जिड़ा ब्रह्म नाल जुड़ गया वह फिर जिधर भी जिस पासे भी देखेगा वो जिधर भी देखेगा ओनू ब्रह्म ही नजर आवेगा। जे हर पासे ब्रह्म है, हर पासे परमेश्वर है, ते फिर किदे नाल झगड़ा ते किदे नाल लड़ाई, किदे झगड़े खत्म हो जाएंगे। और गुरु घर का उपदेश है, फिर ते इंसान एहो ही होवेगा, ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बनाई। कोई बेगाना नहीं, कोई पराया नहीं, किदे

कौन है साहब जी कहंदे ने खालसा मेरो रूप है खास खालसे मैं हूँ करो निवास पर खालसा ओ है जिद विच ना वैर विरोध है ना कोई विकार है जेड़ा रब नाल जुड़िया होया ओ खालसा ना कोई रब दी जात ना कोई खालसे दी जात और ए उपदेश सारे वास्ते है कि आओ भाई असी मना विचो नफरत कढ़ीए दुबदा भाव दूर करिए एक परमेश्वर दे राह ते चलिए और आपा एक होइए।

गुरु साहबान ने धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जितनिया भी लड़ाइया लड़िया वो किसी फिरके के खिलाफ नहीं, वो जुलम के खिलाफ लड़ाई सी। ते जुलम करन वाले दा कोई धर्म नहीं होंदा। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का इतिहास पढ़ के देखो, उन्हां दे नाल हिंदू और मुसलमान पठान तक साथ दे के जुलमिया दे नाल लड़िया करदे सन। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की फौज विच हिंदू भी सन, मुसलमान और पठान भी सन, जिन्हां ने समझिया कि ये इंसानियत के भले वास्ते लड़दे ने। हथियार दो बंदे चुकते हैं, एक जुल्म करन वाला और एक जुल्म नू रोकन वाला। जिहड़ा जुल्म करदा है उहनू फिटकारां पैंदियां ने, ते जिहड़ा धर्म की रखिया वास्ते हथियार चुके, लोकां दे भले वास्ते हथियार चुके, जुल्म दे टाकरे वास्ते हथियार चुके, दुनिया हमेशा उन्हां दी पूजा करदी है। तो आओ भाई आपां भी महापुरुषां दे राह ते चलिए, और ये जिहड़ा उपदेश है इस नूं अपने दिल विच थां लईए, उपदेश ते चलन की कोशिश करिए। गुरु साहिबां दा उपदेश अणख नाल जीवना, धर्म की किरत करनी, नाम जपना और वंड छकना, जिहड़ा इन्हां गल्लां नूं

कुछ अर्पण कर। पर मेरे पातशाह कहंदे ने उना दे तन मन अर्पण करी जिन्हां ने अपना तन मन वाहिगुरु दे अर्पण कीते। फिर उन ओ परचून दे मालिक नहीं हुंदे, ओ तां थोक दे वपारी हुंदे। थोक विच पदार्थ देंदे ने, लोकां नूं वंडदे हन, पर अपना सब कुछ वारिया हुंदा वाहिगुरु तों।

मनुख भगती करे जन्म मरण तो छुटकारा नहीं मिलता। पर पातशाह कहने ने बड़ा सुखैन तरीका है, महापुरुषां दे चरणा दी पूजा कर, उन्हां दे चरणा ते सियाणपां छड़ के जदों अपना सिर रखेगा, बस बाबा जी कहंदे ने जवां दी मार तो तैनू छड़ा लेंगे। कबीर जी ने भी आख्या

इस संसार ते कोई प्राणी एक दूसरे दा कोई एक काज सवार सकदा है, कोई दो, कोई तीन, कोई दस, कोई सौ, मगर सारे कार्य सवारन वाला समर्थ ओ परिपूर्ण परमात्मा है। ते गुरसिख ए यकीन करदा है कि मैं मनुख दे चरना कमला तो की लेना है, मनुख दी ओट करके की लेना है, क्यों ना मैं उस परमेश्वर दी ओट लवां जो

परमेश्वर का नाम सारिया नू विसर गया सी। पाप विच रुझिया होया संसार ते जदो अपने बड़ाए हुए संसार दी ए हालत वेखी निरंकार ने के मेरी बनाई हुई सृष्टि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईरखा द्वेष दी अग विच जल रही है ता निरंकार ने गुरु नानक दा रूप बनाया। गुरु नानक दा रूप तार के संसार ते जगत जिया नू तारन वास्ते आ गया।

मैं ता कालू दे घर माता तृप्ता दी कुख चो जदो जन्म लिया दौलतां दाई ने वेख्या के जिस कोठड़ी विच आ बालक जन्मे है वो सारी कोठड़ी प्रकाशमान हो गई है और जिवें हजारा नहीं लखा नहीं करोड़ा जय जयकार दियां आवाजां आ रही हैं और एक

नानक राय सब सिखन को सुख दे जै ते भए सहाय। आज बेदियां दी कुल विच गुरु नानक ने आके जन्म लिया और इस कुल नू धन कर दिता। इस वास्ते गुरु

अंगूठी पा के जदों खेडन वास्ते बाहर गए ते खेल के जदों घर वापस आए ते हाथ विच मुंदरी कोई नहीं सी। अंगूठी ना वेख के माता तृप्ता जी कहन लगे, नानक हुणे मैं तेरे हाथ

खेत दा मालक जदों राय बुलार दे कोल पहुंचया आख्या राय जी इस बालक दी गाइयां मजियां ने मेरे सारे खलियान खराब कर दिते सारी खेती उजाड़ दिती। हुण मेरे गरीब दा हरजाना कौन भरेगा। राय जी ने पछाण लिया ए तां मेहता कालू पटवारी दा पुत्र है। आख्या नानक तूवे क्यों कीता। आख्या मैं तां उस प्रभु दे रंग विच बैठा सां मैनू नहीं पता। मैं ता कालू नू सदिया। मेहता जी जदों आए राय ने आख्या वेख वही तेरे पुत्र नानक ने गाइयां मजियां

तेरा मोदी खाना गुरु नानक लुटा रहा है, जाके उदे कोलो हिसाब किताब ले, नहीं तो लखा दा घाटा तेनू हो जाएगा। कोई लोड़वंद गरीब गुरबा गुरु नानक कोल आ जांदा है, चोली विछांदा है, गुरु नानक तेरा ही करके विच पा देंदा है, ते कोई पैसे नहीं लेंदा किसे कोल, जाके गुरु नानक कोलो हिसाब ले। दौलत खान जदों आया कहन लगा, गुरु नानक मैं तेरे नाल हिसाब करने, कितने दिन हो गए तेनू कम कर दिया, पहले हिसाब ला लईए के की नफा होया की नुकसान होया, ते अगे फिर कम चलावांगे। साहब जी कहन लगे, बेशक हिसाब कर लो भाई, कर लो हिसाब। ते जदों सारा हिसाब होया, इतिहास विच लिखे है के दौलत खान जदों सारा माल अंदरों गिणिया तोलिया, ते की हिसाब विच लिख लिया, हिसाब कीता ते 735 रुपये गुरु नानक दे वध निकल गए। दौलत खान बड़ा हैरान होया, कहन लगा मैं सुनिया के तू सारिया नू रब दे ना ते दे जांदा है, ते फिर तेरे कोल ए पैसा नफे विच कित्थों निकल आया। गुरु नानक सच्चे पातशाह कहन लगे, दौलत खान जो रब दे रस्ते ते खर्च

उस बच्ची ने सुनिया के इस जीवन दा कोई भरोसा नहीं है ता अगा होके जिथे गुरु नानक सच्चे पातशाह बैठे सन उस बच्ची ने जाके जदो गुरु नानक सच्चे पातशाह दे चरना ते सिर रखिया गुरु नानक दे चरना दी शो पा के उस बच्ची दे कपाट खुल गए ज्ञान हो गया कि मैं किस वास्ते संसार से आई हूं और मेरा मनोरथ की है। ऐसा सच दा उपदेश गुरु नानक ने दिता उत्थे संगतां नूं के भाई एक परमेश्वर दे नाल जुड़ो एक प्रभु दा सिमरन करो उस सिमरन ने ही तुहानूं इस संसार सागर तो पार करना है।

होतना बारंबार जो बंथल पाके पोंगिरे बोरना लागेगा जो बंथल पाके पोंगिरे बोरना लागेगा गुर सेवा पे पद कमाई तब ए मांस दे ही पाई मानस जन्म अमूल पायो वृथा काहे गवाओ गुर सेवा ते भगत कमाई सब ए मानस दे ही पाए इस देह को सुरे देव सदे पज हर किसे पजो गोविंद भूल मत जाओ पजो गोविंद भूल मत जाओ मन चमका लाओ

जब लग बिकल पाई नहीं बाणी पज लै रे मन सारे पानी अब ना पजस पजस कब पाई आवे अंत ना पजया जाए ए तेरे अवसर ए तेरी बार ए तेरे अवसर ए तेरी बार कट पीतर तू देख विचार।

या भीतर जो राम बस्त है साचो ताए पछानो पई पर आप तू मान देवरिया गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया।

गोविंद भजन बिंद्र थे सब काम जो किरपन के नरार्थ दाम गोविंद भजन बिंद्र थे सब काम जो किरपन के नरार्थ दाम फिरत बोते जुगहारे हो फिरत बोते